मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।